आउ हेके संगकुबनि शालनि हेतिनि बहायनाव क काम खनामनि बिसिंते सिनि बान्दना सों जेंलायुनानि थांलायुनाय तिनि क काम संखना लायनाय गौतम बुद्धनि साइक्लांजा क काम न क ब्रकबाय साल ब्रुम ब्रुम नि कताल साल कियोकमानि मोला जानो सों जतन मा बुझिथाय साल ब्रुम न खरकसे खरकसा जराय कथार आजायो जतनि न मुंसाया मुंसा ख्लायथाय सामुं दङ बेबा ख्लायथाय सामुं ग चीनी बखानो जतनि स्लाय स्राय स्राय गचिं गग्रुक उंनानि नांगो जतनि बसखांगनिनि बखानो नांगुकमा सिनामदि ताय काहाम वानसुक्रं उंगै फुनुकदि ताय वानसुकदि नों तामु उंनाय निनि थिनांगो जत बरकनि न मानथाय एबा अधिकार दङ बिनि साखनि एबा निजिनि काहाम न रुतुक

आसुकजरा संघ हायुनि खरांगो खनालाके दर्म चरण जमातियानि खरांगो र चापमुङ ताबु खनालायानि तिनि नवर्तिबनि सकांबारिया कक्तुमा नवर्तिबनि सकांबारिया कक्तुमा साकल जाखा तिनि नखा किसा चुमुइ कबल जातोंगाने ताइ ग्रं ग्रं थाय तेम तेम खे वातिबु वाइमानो तिनि तुंगमारि तोंगाने 35 डिग्री सेल्सियस ताइ खामावा 26 डिग्री सेल्सियस आकाशवाणी आगरतला अबनि लगिन पाइखे तिनि फुंनि कक ब्रक पांदा हायुनि खरांग जतन नखुलमका

आकाश बने आगर तना हाय लाम सुगो हाय ने खरंग पांडा पाय मनी आगुलो तेरे सलकामणी पांडा हो सलकामणी पांडा आंधी ने कोक्स हाय तोंगले मनी गांगे एजुकेशन हाय के बा चिनी रंग बसत नांग चिनी बागे अवनति कोग्रोब आणि खबरनी ताकडी बुक सॉन्ग एक्चुअली रियली संगवान सुखने कहेंगे एजुकेशन चिन बागे बस के पावर टोंग अवनो जंग ताक फानो काम के वन चुकी में आपको जब फोनिंग धनी एजुकेशन टोंगने जब रू को टोंगने नंग असंसार नी नंग जिम मुचुंग मानो नंग मुसुंग मानो बेबक मानो इस हमारे को गया है फनो असंसारो नो नंग कच्चे बोरम माने नहीं कच्चे काम करेंगे हंजागी टोंगने अब सिंह सारा निको गया जयपुरुक अंग अनएडुकेटेड बोरुक नोरो चिकन निशामानी को गया सिंह एडुकेटेड उन्ना नांगो प्लस पोर ने नांगो निशामान को किस नी जेनरेशन नेक जेनरेशन ने सिंह कहाँ मुखले चलांग नांग कांग के सिंह उड़ा उड़े एडुकेशन सिंह मुंशान मानन करी है जी मान बगी चीनी एडुकेशन का कैसा चीनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्रस साइंटिस्ट क्रस राष्ट्रवक्र टोंगमानी एक्चुअली के साम बताओ मैं जी एडुकेशन एज ए पावरफुल टूल टू बिल्ड गुड ह्यूमन बीइंग्स इंस्टिल क्रिएटिविटी एंड ट्रांसफॉर्म स्टूडेंट इनटू फ्यूचर लीडर्स इन हिज इंस्पायरिंग स्पीचेस टू यंग माइंड्स ही एम्फसाइज्ड दैट ट्रू लर्निंग बिल्ड्स मोरल लीडरशिप नेशनल प्राइड एंड ए स्पिरिट ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी बस कहाँ को सकना जी नंग तुम और जहाँ के नीन हनी तम तम हो जंग मानी मानी